माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म।

सोई थी सी जो तू दे है सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबने त्याया जिसनों कृपा।

तारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा।

अस तुझ जू कर हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता।

घट घट के पट पट की जाने, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ।

पांगड़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती।

कहि पूपा अंडज जेरज से तज कीने उत पुज खान बहुर राच दीने कहूं फूल राजा हव।

साहिब जी, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा जत

मालिक जी हमको कर तेरे दरबार पोके आगे बदन पसार एते को करहों बेगाना पोका इस्तन ताई भगत ही नानक जी होएगा ता खसमे नाव न जाए कबीर को कराम को मतिया मेरा नाव गले हमारी जीवरी जह किंचे देता केवल ते केवल एक ही भावना एक ही मंग है कि अखा जीवा विसरे मर जाओ जन की भोग तेरा नाम आहार तो दाता प्रभ देवन हार साडे हिरदे दे विच साडे रोम दे विच केवल ते केवल तेरा सिमरन होए ए अरदास हमारी स्वामी बिसरना ही सुखदाते इनिक सेवा प्रवान कुनी होया पुला चुका दिखी मा आओ गुरु प्यारी सत्संग जी अगले प्रोग्राम सरवण करिए सत्कार्यो गुरु कर दे वजीर ज्ञानी नवनीत सिंह जी उन्हां पासो चल रही धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी की लड़ीवार विचार गुर इतिहासिक इतिहास प्रिय दास फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

रख लीनी हर मेरी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए, एहो मन खसम का हुक्म मन। नानक हुक्म मन्ने है तिख उतरै, चढ़ै चुवग्गल वन।

चढ़े चुवग्गल वन महल्ला तीजा बाबीहा जल में तेरा वास है जल ही माहे फिराहे

रहे। जल थल चहु दिस वर्ष दा, खाली को थाउ नाहे। इते जल वर्ष दे, तिख मरह भाग तिना के नाहे। नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वसया मन माहे।

जिन वसिया मन माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु गुरु ग्रीब नवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालु सतगुरु जी की पावन पवित्र हदूद अंदर शामा दे दीवान विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो, जो श्रद्धा भावना सहित हो करके गुरु चरणा दियां हाजरियां भर रहे हो। बड़े ही प्यार दे नाल गुरु सवारियां पासों भाई रिशपाल सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासों अमृत बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। समा होया अमृत बाणी दी कथा दा, पावन पवित्र लड़ीवार 22 वारां दी कथा विच आपां मलार की वार जो गुरु कृपा सदका विचार प्रारंभ कीती है, उस वार विचों अज नौवीं पौड़ी दे ये दो श्लोक आप जी ने सरवण कीते हन। पौड़ी कल दे दीवाना विच करांगे। दो श्लोक जो आप जी ने पाठ सरवण कीता है, तीसरे गुरुदेव गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी रचना तो उच्चारण कीते गए ये श्लोक हन। इन श्लोकां दा भाव गुरु साहब जी ने जो दर्शाया है कि ए जीवात्मा रूपी जेड़ा बबीहा है, चात्रिक है, पंछी है, सारंग है, ये प्यासा है परमात्मा परमेश्वर दे नाम रूपी स्वांति बूंद तो हीणा है, इस करके पुकारदा है, इस करके भटकदा है, इस करके तड़फदा है। सब कुछ हुंदियां भी इस दे अंदर दी ओ तिख नहीं जा रही, प्यास नहीं मिट रही, तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी उस जिग्यासु उस भटकदे होए उस बबीहे रूप जीव नूं समझा रहे ने कि ऐ बबीहा, पहली गल कि तेरा भटकना, तेरा तरसना, तेरा दुखी होना ये वाजब नहीं, क्योंकि जदों दी कृपा होएगी उदों आप वरस जाएगा, उदों तेनूं आप अपने नाम दी बूंद दे के शरशार कर देगा, तृप्त कर देगा। दूसरे श्लोक विच गुरुदेव जी ये कृपा करदे ने कि हे भाई, जे तू थोड़ी जी समझ कर लें, थोड़ा जा सियाणा बन जाए तो तेनू पता लग जाए भी तू है ही उदे विच है, तेरा वासा ही उस पानी विच है, उदे विच ही तू रह रहा है, फिर प्यासा क्यों है, फिर तड़फ क्यों रहा है, फिर इन्ना दर्द दुख क्यों सह रहा है, इन्नी भटकना क्यों सह रहा है। तो गुरु साहब कहिंदे उहदा कारण यह है कि तेनू जिस जल विच तेरा वास है, जिस ब्रह्म सत्ता विच तेरी चेतना रूपी तू ऐ बबीहे रह रहा है, तेनू उहदी सोझी नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, बस इस करके तू प्यास

सुरग बंशावत आल जाल माया जंजाल हमे मोह परम पह पहार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देख खेल संकोचे तो नानक एक जह अबगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दोहु पाक का पे तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपे कौतुक करे आनंद जोज आपे रास भोगन निर जोग जिस भावे तिस अपन ना इलावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप बिस्थार जात सुभावै तां सृष्टि उपाय आपने पाणै लै समाए तुम ते भिन्नो नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोय ना मारै सो मुआ जिस मनहु बिसारै तिस ताज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहे ओ व्याप प्रत पल जीअन बहु भांत जो जो रचियो सुत सहत आत जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आसना ब्रति जाए सेवक कौ सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निरवैर आन दिन पूजह गुर के पैर एह लोक सुखिए पर लोक सोहेले नानक हर प्रभु आपे मिले साध संग मेल करहो आनंद गुण गावह प्रभु परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ दे का करहो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह सुआओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हिरदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोए लेहु सवार राम नाम अंतर उरतहार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसाए तिस साच परीखिया मन तन नाम जप हो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहो जाए सच वापार करो वापारी दरगह निभाए खेप तुम्हारी एका टेकर को मन माहे नानक बहुर ना आवै जाहे तिस ते दूर कहां को जाए उबरै राखन हर ते आए निरभौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन कौ कोई न पहुँचन हार सर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बस है सुहोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पह अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एकस कट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नव निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल
बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पणी बैसंत्र माहे चार कुंड दह दिसे समाहे तिस ते भिन्न नहीं को ठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससिय सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कब हूं डोले सर्ब कलाकार खेल खेल मोल ना पाइय गुणे अमोल सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद भरम का नास नानक तिन मैं एहो बिसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्ब व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पहवैता करे बिसथार तिस पहवैता एक ओंकार अनक कला लखी नह जाए जिस पावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिसे आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वरतारा सर्व नयन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आपन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कह मध अलिप तो रह जो किश कहना सो आपे कह आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे तन लय समाए इस ते होए सुना ही बुरा ऊरै कहो किने कश करा आप भला करतूत आतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संग राच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए तो सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक एहो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतेवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का इह सुआउ जन कै संग चित आवै नाउ आप मुकत मुकत करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाउ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरु गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागहु तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कुमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहो तिने धान
ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ, ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਾਵ ਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ, ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸਨਾਨ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ, ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਤਾ, ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਪਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ, ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ, ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ, ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਨਿਰਮ

मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथै पाई, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िय है, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दान मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंतरात, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कूड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकी अगला कथिया न जाहि, जी को कह पिछे पछताए, तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरं सिद्धां की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै हो न कोई होर, तिथै जोद महाबल सूर, तिन महराम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महमा माए, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहि मरे न टागे जाहे, जिन कह राम वसै मन माए, तिथै भगत वसै के लोक, करह अनंत सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जेखु कथै तंत अनंत, तिथै लो लो आकार, जिव जे हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीरज सुनियार, हरण मत वेद हथियार, पाओ खलागन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तटाल, घड़ी ऐ शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़ै के दूर, जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, के

दाहितस्वी छपैछन्त्व प्रसाद चक्र चिहने अर वर्ण जाते अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितुज कही जय कोट इंद्र इंद्रान साही साहान गणि जय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वे सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयाचंद नमस्तुंग काले नमस्तुंग कृपाले

जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी चंतवा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अदे है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है

समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जुग जुगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जुग जुगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेदेवे सुधर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो सांग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृहत्कर्ता अदो उर्ध अर्धंगा गंगो गहरता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अचेदी अपेदी अनामंगा कामं समस्तो पराजी समस्तस्तपामं तेरा जो चाचरी चंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रिया चंद अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्नाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंगा गंजे नमस्तुंगा पंजे नमस्तुंगा काले नमस्तुंगा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साहसाजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा ऋतसिद्धं निवासी चरपट चंत्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत जौन पुरख पाद सर्वान् त्रिमान् देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम थामना जा जाक रूप रंग नरेक आद प्रकुदार मूरत जौन आदशेख देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हो फैलु अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदय मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखिल खेल अनंत को फिरेक दे पेव न जा नहीं जे बेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जानी के जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरा चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के विकह जग जा पीजे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यु सबै जी था परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्विश्व रच्यो सुयम भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत अभूत लख अभेसु अंग रग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुस्तते पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप असूत अंग हीन भंग नात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनभेद सर्वशास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कह
नेत भागत नित कोट सिमृत ग्रंथ शास्त्र नया वैभव चित मत भार चंत प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश आजान बाहु साहन साहू

चंद, चतुर चक्र करता, चतुर चक्र हरता, चतुर चक्र दानी, चतुर चक्र जानी, चतुर चक्र वर्ती, चतुर चक्र परती, चतुर चक्र पाले, चतुर चक्र काले, चतुर चक्र पासे, चतुर चक्र वासे, चतुर चक्र मान्य, चतुर चक्र दान्य, चाचरी चंद्व, चाचरी चांदना, सत्रैन मित्रैन परमंग न पित्रैन कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय, न चित्रय न मित्रय परे है पवित्र प्रतिशय दिशय दृश्य कृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते, किया चिज दिशय किया भिज पिशय किया गंज कर्मय किया भंज परमय किया भिज लुकै किया दित सुकै के अवतूत वर्णय के बेभूत करणय के राजन प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्णय के सर्वा अपर्णय कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि वर्मं स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आदि अदेव है कि आपूपेव है कि चित्रं बहिन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक बैव है कि गै भूल गैव है कि फूल गुना है कि सहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रही मैं कि कर्मं करी मैं कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली मैं के परमं फही मैं के आकल अला मैं के साहिब कला मैं के हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमेशल सलाम मैं सलीकत मुदा मैं गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बेलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरिफुल अजीम मै रजाई के किन्न है अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज हैं गनीमुल की राज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं सुयुक्त सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवुल अकाम हैं निर्वाद स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओंगाद रूपे अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अचूत है कि नरकं प्रणास है प्रतुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है।

है, अगा है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित्य है, सुनित्य है, अजात है, अजाद है, चर प्रचंत प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग, सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग तर्मंग, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल चंत्व प्रसाद, नमो नरक न शेष दैवंग प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं वेपुते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे, परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे, निर्वाद विपुते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न मात न जाते न पाते, न साकं शरी कहे अमितो अमी कहे, सदैव प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चराग है, के कामल करीम है, के राजक रहीम है, के रोजी ध्यान है, हिराजुक रहिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरिफुल सिकन है, हीरा सुल्फिकन है, कलंकं प्रनाश है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं प्रनाश है, बहस्तुल निवास है, के सर्वल गवान है, हमेशल रवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अदीश है, अदेशल अलेख है, हमेशल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमिकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के मितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के मितो विभूत है, के मितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के मितो अपंग है, मत पार छंत्व प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंजु, हर नर परपंजु, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बरनर अमंड, अनपवनाश, मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल तल मुदाम, अंचिज अंग, आसन अपंग, उपमा पार, गतमित उदार, जल तल अमंड, दिस्विस अपंड, जल तल महंत, दिस्विस बेअंत, आन पवनास, त्रेतर तुरास, आजान बाहु, एकैशदाहु, ओंकाराद, कथनी अनाद, खलखंड खेयाल, गुरुबर अकाल, कर कर प्रणाम, चिचरण नाम, अनचिज गात, आजिज नाबात, अनचंज गात, अनरंज बात, अनटुट भंडार, अनडट अपार, आडिट धर्म, मत टीट कर्म, अनब्रन अनंत, दाता महंत, हर बूर मना चंत्व प्रसाद, करुणालय है, अर्काल्य है, कलकंडन है, मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वभारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, तपा तप है, अकृता कृत्य मृता मृत्य मृता मृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी त्रित्य अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत्य मृता मृत्य जपा कृत्य मृता मृत्य निर्णायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, कुरुणालय है, निर्नायक है, सर्पायक है, पवंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, परमात्म है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस

तेनमो वाक भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामित्र भंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी चंद अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलक अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम गाह अटा अनाथि परमाथि अजो नियमो नि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासे सुधर्मं विपूते सदा सचदानं सत्रं परनासे करिमुलक निंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे।

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दों तां गावो हरि के रामन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला सुमरत सुवामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिव सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधार साच नामे आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा जिसतियां है वडियाईया कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजी पंच सब तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजी कला जित कर धारिया पंच दूत दिवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुल जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाजी साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया तुद बात सुमरत कोई नाही कृपा कर बनवारिया इसनु होर साओ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मुह टुटा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया कह नानक केहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सोजन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिरह दा जिस इक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे कह नानक जिस दे

विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देख देख पते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के

0: पग पिटाना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्खंद पत गई
1: घृणा वे किछ खाए ना पाई रह दिवाड़ी मणि मसाणी अंदर जाने।

गुरुग्रीवा अंतर जमी सतगु जीव तंत्र सहे से गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जग दी ज्योत हाजर हजूर कल जुग देव बोतने मृता सहित बिंदी सतगुरु जीओ आप जी दर हाजिर पढ़ते हैं बेअंत गुर सिख माई पाई प्रो आप जी दे सतगुरु जो बेअंत मा बेटक आप जी सार सिखी दान प्रोसा दान चन्ना कुना प्यार बख्शना खजाने भरपुर ने सो आओ गुरु प्यारे साथ समझो कीर्तन दी निक सेवा प्रवान कनी हुई भुला चुका देखिमा कनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए सत्कार योग पैसा भाई परमजीत सिंह जी उन्होंने पासों अज दे श्री मुखाक्ति विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दसलो फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सत्संग जी बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी साहेब आजगुवती पाशे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लेते आए फिर अगर गुरते अमरदास रामदास से फिर सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याई दुख जाए तेग बहादुर सिमर आवैसाए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पातशाह तैंतर के खालसा साहब बोलो जी वाहेगुरु गरीबन वाज आप जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चारी मुक्ते हड्डियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया देख चलाई के वाही देख डेढ़ किया दिना प्यारे सत्यारा नहीं कमाई दे अंदर के बोलो जी वाहेगुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ये सही दिते बंद बंद कटवाई खोपरियां लुहाइया चरखड़िया से चढ़े आ रहे ना चलाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा किसी तरीके सत्संग निभाया तिना नहीं कमाई दे अंदर के बोलो जी वाहेगुरु गुरुद्वारे अंदर के बोलो जी वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता वै चित आमर का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब तर चरिया देख देख की फतेह ब्रत की पै पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु सिखा दा मन नीवा मत जी मत पद के राखे आप वाहेगुरु गुरु की विवाज पंथे सदा शाही दार जी गुरुद्वारा निकाला साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों आप के पंथ रूप छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार से सेवा संभाल दान अपने खालसा जी बख्शो ये रोटियां की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दोए कर जोर करो अरदास तो भावे ताने रास ये गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास दी दतार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पान हुए संगतन दर्शन राधे के निहाल दतार दियो बेहद बाणी के पाठ हुए अस में रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वारत कितने कितने विद्वान भीर ने अज हुक्मनामे की कथा तैयार की कृपा करो हो भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी स्रोत के सच कर प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतान हृदय दिवसा की कृपाता करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी ध्यान पर बुद्धि बख्शिश करो गरीब नवाज इस खुशी में आप दिन बख्शियां दातों में मित्र कड़ाप शादी जगह तैयार करके हाज दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संकत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जब बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रक्षा बख्शिश करो जी कृपा कर दतार जी आप जी बख्शियां दातों जो नगर चुट सवारियां प्रवान कर जी विवाज आपके चरण सेवा कर रहे सारे पैरिया सिंघा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाढ़ी करा बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावना में कृपालता करो दार कृपा करो जी अमृत वेले तो लैके दरते आई साफ संकत की हाजिरी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ सागतों का दरते तिर पर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गुरु जी बिना दतार जी बख्शिश करो गिरी खालसा पंथ सिख कौम एकता सुभाग प्यार की बख्शिश करके सत दोई दाल बख्शो चाना ना जुड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो दार हर मैदान दुआन फतेह बख्श कर निर्भरता करो जी कृपा करो दूर दुराडे बैठिया घर की लाइव कथगी सरवण कर रही सारी संगत की हाजिया प्रवान कर दता हर आपने कृपा की संगत ने उद्धव बख्शे संगत आप जाना धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया हर लाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत दस संगत माया भेटा कर रही है चरणा प्रवान करो बख्श कर सब कमाइया सबर करो कारोबार से वध बख्शो दता हर सब संगत दुभकामनावान सबना पूरी करो जी मेरा तो करो सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो बेहतर हुक्मनामे बख्शे करके प्रांत लड़ी वास्ते अच पाठ करने वास्ते आ गया बख्शो रेंदे कार सवार की चरण धनवाद बनाओ शुद्ध के पित्र सियालियां की बात करता सही प्यारे मेनो जिन्हे बराबर नाम जता नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰ

सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरौ तुमरा नाम। सो कहटल गुर सेविए, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।

भगत खजाना गुरमुख जाता, सतगुर बूझ बुझाई, संत हो गुरमुख दे वडियाई, रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै, काम क्रोध विचहु जाई, आप छोड़ नाम लिव लागी, ममता शब्द जलाई, जिस ते उपजै तिस ते बिनसै, अंते नाम सखाई, सदा हजूर दूर नह देखो, रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवै घट अंतर, सच्चे स्यों लिवलाई, सत संगत मह नाम निर्मोलक, वड्डै भाग पाया जाई, भरम न भूलहो सतगुर सेवहो, मन रखहो इकठाई, बिन नावै सब भूली फिरदी, बिरथा जन्म गवाई, जोगी जुगत गवाई हंडै, पाखंड जोग न पाई।

हम स्नान करहे से जन निर्मल सब दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चित है नाही बिन नावे बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत त्रैगुण भरम भुलाई गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटे चौथे पद लिवलाई पंडित पढ़े पढ़वाद वखाण है तिन्ना बूझ न पाई बिखिया माते भरम भुलाई उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सो गत पाए सबदे सच समाई काया नगरी सबदे खोजे नाम नवंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाणा बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चित अदिष्ट लगाई आदिष्ट सदा रहे निर्माल निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हाँ गुरशाला ही सदा आपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक कहे बेनंती नाव गत पत पाई राम कली महल्ला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतहो कहना कछु न जाई संतह गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हार बेट सब किच मैला संतहो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे भावै सा पूजा हुवै भाणा मन वसाई पूजा करै सब लोक संतहो मनमुख थाए

राम मुरारी अन दिन जागत रहे दिन राती अपने प्रै प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कुमाई अपने गुरविटह बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी।

रहाओ। जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए तुद बनता अरमीता, तिस ठाकुर को रख लिहो चीता। जिन दिया तुद पवन अमूला, जिन दिया तुद नीर निर्मूला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकुर की रहो मन सरना। छत्ति ही अमृत जिन भोजन दिए, अंतर थान ठहरावन को किए, बसुदा दियो बर्तन बलना, तिस ठाकुर के चित रख चरना। पेखन को नेत्र सुनन को करना, हस्त कमावन बासन रसना, चरण चलन को सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा। अपवित्र पवित्र जिन तू करया, सगल जोन मह तू सिर तरया। अब तू सीज पावै नहीं सीज है, कार्ज सवरै प्रभ कार्ज सवरै, मन प्रभ तिया वीजै। इहां उहां एको ओही, जात कत देखी तत तत तू ही। तिस सेवत मन आलस करै, जिस विसरै एक निमख न सरै। हम अपराधी निर्गुण यारे, ना किछ सेवा ना कर मारे, गुर बोहित वड भागी मिलया। नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली महला पंजवां।

महला पंजवा। दावा अग्न हरे, दावा अग्न रहे हर बूट, मात गर्भ संकट के छूट। जाका नाम सिमरत पौ जाए, तैसे संत जना राखे हर राय। ऐसे राखन हार दयाल, जत कत देखो तुम प्रतपाल। रहाओ जल पीवत ज्यो तिका मिटंत, धन बिगसै ग्रह आवत कंत।

बाला प्रीतम दे प्रीतम मिल जाए क्यों हर जन राखे कंठ लाए ज्यों अंधले पेख

पाए चीत। दयाधारी तिन धारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे नैन अलोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए। भ्रम भय छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब बिस्माद। राम कली महला पंजवा, जी जंत सब पेखी है। प्रभ सगल तुम्हारी धारणा, इहो मन हर कै नाम उदाहरणा। रहा खिन मैं थाप उथाप दे, कुदरत सब करते के कारणा। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग विदारणा। नाम जपत मन निर्मल हुवै, सूखे सूख गुदारणा। भगत शरण जो आवै प्राणी, तिस ईहां ऊहां ना हारना। सूख

पालना अनिक वार कूट जन उपर नानक वंजै वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको अंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नासह हर स्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते हुए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई पतत पुनीत किए किन पितर अज्ञान अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंध कुप भिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बन आई जन्म मरण का सहसा चुका बाहुड़ कतहु न ताई नाम रसायन इहु मन राता अमृत पी तृपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसिया जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निदान पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियानप उकत न मेरी पूरे गुरु कमाई जब तब संयम सुच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महा बिख्या मह गुर साचै लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजल पार पवाई बेसमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंधिया कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीयन का दाता देखत तृप्त अघाई।

राम कली महला तीजा आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चै सुवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनु होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिरह दाद सिक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आव संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी करह कहानी अकथ केरी कित दुआरे पाईए तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म नेह पाईए हुक्म नेहु गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी कह नानक सुनहु संत हु कथियो कथ कहानी हे मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिने तु भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिंठ गौली पाईया कुरबान कीता तिसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया हे मन

शब्द रतन जित मन लागा इहु हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया भाउ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पाए कह करता आपे हुक्म वरताया विखै गुरमुख सह बुझाई तोड़े बंधन हुवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवै एक स्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना

जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक ओ शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया। हे नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी। हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। एहो वे संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर इक है हर बिन अवर न कोई। कह नानक ए नित्रंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई।

जित सुनी मंथन हरिया हुआ रसना रस सुमानी सच लख विडानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र हो सच है सुन नैनु पठाए हार जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पाउन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नव निध तिस्तांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया एहो साचा सोहिला सच है कर गावो गावो ता सोहिला कर सच है जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्यावहे जो अतुद भावहे गुरमुख जिना बुझावहे एहो सा सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कह नानक सच सोहिला सच है कर गावहे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग।

आए वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता तिना प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे शीश दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित्या वि चित्यावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख देख पते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो हे निमाणियां दे मान सतगुरु नितानियां दे तान सतगुरु नियोटियां दी ओट गुरु गरीब नवाज दसां पातशाहियां दी आत्मक जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी का पावन पवित्र फुरमान है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे माँ वाक अनुसार गरीब नवाज आप जी ने अपार कृपा कीती है अज आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी काका जजवीर सिंह सपुत्र सरदार ओंकार सिंह बीबी निरपाल कौर अते बच्ची शरलीन कौर तंबड़ सुपुत्री सरदार दलजीत सिंह तंबड़ बीबी सोनका कौर तंबड़ सच्चे पातशाह जी सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आनंद कार्ज होए सतगुरु जीओ आनंद कार्ज की मर्यादा निभाउंदे आप जी के हजूर विचरदियां हुईयां बेअंत बेअंत भुल्लां आप जी ने मुआब कर देने अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जी रहमत करनी इस सुभाग जोड़ी दे सिर ते सदा मेरा भरिया हथ रखना ग्रिस्त धर्म दियां खुशियां खेड़े सुभाग जोड़ी दी झोली विच पाउणियां सच्चे पातशाह जी रहमत करना सदा मार्ग दर्शन करदे रहना दोहां परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना दोहां परिवारां नूं आपसी प्रेम प्यार विश्वास की दात बख्शिश करके नवाजना सेवकां दे कार्ज राज करने गरीब नवाज खुशियां दे मौके सुभाग जोड़ी वालों आप जी नूं सुंदर पोशाके भेट किए गए आप जी ने अंगीकार करने लोक परलोक विच पड़दे कजने बख्शिश किए भंडारियां विचों कड़ा प्रसादी देख हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे सतगुरु जी रहमतां करनियां सेवकां दियां जो जो भावना कामना आप जी ने अपने दर ते प्रवान कर लेनियां बेअंत संगतां ने आप जी के हजूर हाजरियां भरियां भेटावां माया अर्पण कीती समूह संगत दी हाजरी किरत कमाई सफलियां करनी सभना दियां अरदासां बेनतियां दर ते प्रवान करनियां सभना नूं चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना गरीब नवाज इस वक्त कृपा करो पावन पवित्र श्री मुख वाक बख्शिश करके नवाजो जी हुक्म ते चलण दी समर्था बख्शो अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कार्ज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिले आप जी का नाम चेतावै नानक नाम चढ़दी कला
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रह न ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो।

हलत पलत पार ब्रह्म सुवारे, कार्य होए सगले पूरे रहाऊ, हर हर नाम जपत।

उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करते हैं, सब सहे ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनेरी। निगाह सतगुरु की सब दे ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुरु की प्रसन्नता है, सतगुरु जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे ये लोग ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुरु दी नजर करेरी है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना से सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारे, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ये मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बार है बार। ये मानस जन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारे, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की से। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उसनूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साढ़े ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वह भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ये मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इस नूं मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इत्थे इस नूं सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहिंदे ने कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटके से आए जाए दुख पाएगा। जदों ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आउण जाण दा गेट बन जाएगा। फिर की होवेगा? केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दियां, पशुओं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जूना भोगण तो बाद, 84 लाख जूना भोगण तो बाद, तेन ए भई प्राप्त मानुख दिहोरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरे भरिया। जिहड़ी तू आवागमन की भटकण है शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी के दर ते, कदी किसी के दर ते, तू उस परमेश्वर का हो जाए। जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। जदों तू परमेश्वर का बन जाएगा,
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

की लीला की नितना है सकल देवहारे बगाए स्मार्त ज्ञान ध्यान जन्दे जनता स्ना हवसे पूछ नीच किसके स्थान जैसा नाम तैसा नाम ज्ञान नाना व्यक्ति नो विस्तार प्रवनासी एक निकार नाना व्यक्ति बंत बनाई अपनी कीमत आते भाई नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार के पास जिस अपना नाम लाए नाम चलते पद में सो जनगत पाए दूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष माए समाणी सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफरी